कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं ये करती हूँ. खाओ दो यार आदरे कराने मैं मंग आदरे करना आगे खुलेंगे अक्वा के ही तो आकार वेला होया याने वाना मंग सुन दक्वा गे होया असलिंग याने ना ऐ तरंग लसन आदरे अक ओ ही ते ते याने वाना नतन थिबुना ना मैं उदावन लसन में मंदारम रात्री ए होया वेनुएक

तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं ये करती हूँ खाऊद आट आदर करने में मंग आदर करना आगे केला ओब केला तती ओब टाइम आहार न वेला तती एम विंदल तती एम आदर कर लाता थी है भाई एक दयाक ओया के निकट आदर कलाना ओया वत्ता मतक कर ला अन्न ए आई सराट एन्ना बिंदो यहाँ से कुलहायानु पहायानु पहायानु पहन किया ए आट आदर कराती ओया वत्ता मतक ना दा

आदरणीय तरंगा का ओमंग अमतक कला माव हम दवसकम अमतक कुना माव एक ऐसे देखा किंदा दुर्दिक किया जीविते इट पासे ऐहा पटंगर तमट माव मतक कर लदेन एक तमाया पे आदरे लसन में मतक्या मांकाउशाल्या ऐहा असंका

सुबह मंदारम संध्या का आदरणीय तरंगा मंदारम रह के अन्न हित अमु तुम सहने एक दिन मनो चिकित्सा वक वगे वे सटहनक पन दिन वाट स्तुति के अला आदरणीय इंदिका सहोद रह के ना बहुम स्तुति सुबह मंदारम रह को तरंग मैनिका मम मावा तमतक कर ला आदर कर पुया मावा मतक कला मम पर रख वेला तिबन एचराई दुबई वलिन दीपिका

ने दिसवन लांगटना है पहसर दैने देवे मां के सीता अतुला सुबह मंदारम रहा काका अदमा मेहम किया ना हंडन देवने सितवल टा वागे महीन है नहीं तवल टा और आगे वड़े सड़ान दिवसुआक रसी राग मिंगे हम किया ना आदरणीय तरंगा ओए माया खारी दासिन मा देवी अलवुना सुंदरतम प्रेम नुंबाई दैन मागे लवट आई दिवन्न में बैरी ना ऐ तीन दंग ओया दिह बालांग इन्ना ओया थारुआक पहलावत हासे इन्ना आद मैनिक यान ने को हम द पुंचीर बटु थारुआ मत क करला मागे आदरे ओया आट दैन ने दाट दे पारा की ताने पायन्ना कद बांग हरी माधरे जीवित इवर वेनतुरु एक बालापुरत अक्वितराई ए बालापुरत तो है नाम होया मंग रत्नपुरे रेशा

राइट मेनेनंग जाइडा ढबियो के बार दे नदन में पेटें किसा तुनाई देखाई एकाई मेन किसा के वेडी को पतंग करता लाइव एक में पेटी हत्ता पहाक बलागरी ना सीए पहुकरा नोने रा जो